ही सम त्रिपुरारि तरु विदित सकल संसार कौशिक सुनो बंद एह बाल कुटिल काल बस निज कुल घाल तुम हट कहु जो चाहो उबार कहीं प्रताप बल रोष हमारा सूर समर करनी करही कहीं न जनाब ही आप विद्यमान रण पाये कायर करही प्रलाप सुनी कटु वचन उठार सुधार हा